0: कभी पर
1: दिस मिस कॉल फोन
0: कभी भी आप एन आई कॉपी वॉट मिस ऑफ एट हाउस the 5-1 I'm on the